0: क्या टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीतां दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7073 416-917-7763

0: मम्मी पापा दे वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
3: 647-706-6640-647-706-6840।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: ਸੀ ਹੋ ਜੇ ਏਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-242-3158

आज खूबसूरत सवेर का खूबसूरत लोग खूबसूरत पंकज सी है चलो जो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी रही अमेरिका और कैनेडा के सुन रहे हो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन के एरिए अमेरिका के जिते सानू तुसी तकरीबन 300 तो 400 किलोमीटर के एरिए तकरीबन 500 तो 600 किलोमीटर ईस्ट वैस साउथ नॉर्थ के कैनेडा के सुन रहे हो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी जी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1.9 मिलियन लोग ने जड़े GTA एंड सराउंडिंग एरिया दे विच जिन्नी पापुलेशन GTA चा उन्नी ही पापुलेशन GTA तो बाहर है एक्सक्लूसिविटी दे नाल लंडन किचन वाटर कैम्ब्रिज दे नाल नाल सी तुहानू बहुत सारे ऐसे शहर ने जिते सिर्फ तुसी AM 530 ही सुनते हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़दी कला वाला निरभउ निरवैर मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे एक सफर के सामने शामिल जो बहुत खूबसूरत पर तुहाडे साथ नाल जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो लै ली तुहाडी अज्ज दी टिकट है स्टूडियो दे नंबर ने तुसी कॉल करनी है 647 जो स्टूडियो लाइन ने 647-360-4771 647-360-4771 स्टूडियोज़ दे नंबर ने 647-360-4771 ते तुसी साडे नाल पार्टिसिपेट करोगे चलिए इस सफर दे वल जो बहुत खूबसूरत के जिंदगी की रेलवे हर कोई सवार है अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतजार है भूखे को रोटी का बेकार को रोजी का इंतजार है इन इंतजार की कड़ी में शामिल करते हो अपने कीमती समय विचों अपनी जिंदगी दे महत्वपूर्ण समय विचों तुसी कुछ पल कुछ मिनट कुछ घंटा साडे नाल शेयर करते हो आप सब दा तहे दिलों धन्नवादी हाँ पियर्सन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 जिथे एयर कैनेडा अपनी उड़ान भर चुकी है अज के दिन की शुरुआत हो चुकी है दिन बहुत खूबसूरत है और बरकत वाला जो है रहेगा सो कुछ खबर जिन्हों वाल मैं विशेष तौर पर जाना चाहूँगा सब तो वड्डी ते अहम खबर जिहड़ी इस समय अमेरिका और कैनेडा दे विच वो है टैरिफ्स नूं लैके हजे टैरिफ्स दीआं अनाउंसमेंट्स हो रहीआं ने इंप्लीमेंट भी नहीं होए पर उस तो पहलां बहुत वड्डा असर मानसिक लैवल दे उत्ते लोकां दे गिआ बाज़ारां दे विच असर जाणे शुरू हो गए ने कल जो है कनेडियन जिहड़ा डॉलर है अप गिआ जदों अनाउंसमेंट्स मार्क आर्मी की वजारत ने कीतियां इस अनाउंसमेंट्स सारे ही नैशनल रेडियो चैनल्स ने सीधे तौर दे उत्ते ते टीवी चैनल्स ने सीधे तौर दे उत्ते लाइव प्रसारित किया इस अनाउंसमेंट दे विच मिनिस्टर्स ने अपने मंच तो स्टेज तो खड़े होकर संबोधित किया मुल्क नूं समा वो याद आ गया कि जदों विश्व युद्ध लगते हैं तो उस समय सरकारां अपने बशिंदियां नूं आगाह करदियां ने ते उन्हां नूं समझाउंदियां ने ते उन्हां नूं चढ़दी कला च रखदियां ने कल बहुत चढ़दी कला वाली गलबात जिहड़ी है मिनिस्टर साहबान वालों की गई जो कि मार्क आर्नी की रहमनाई के अंदर ये गलबात हो रही थी इस विच कहा गया कि असी तकरीबन 7 बिलियन डॉलर का फंड तैयार किया एमरजेंसी फंड जिन्हें भी खिते इस टैरफ न प्रभावित होणगे उन्हां खित्तियां दे विच EI यानी कि अनइंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस लाजमी किया जाना जिस बंदे दी इनकम गई है उसनों खर्चा मिलता रहे ता जो अपने खर्चे चलावे ते नाल नाल दूसरे पासे जड़ा हैगा इन्हां कंपनीज़ नूं चलदे रहण दे लई एक समा एक क्वेश्चन दवांगे ता जो असी नवे सैटलमेंट्स जिहड़े ने यूरोप दे नाल यूरोप नूं खास तौर दे उत्ते जिहड़ा हैगा प्रसारित किया गया संबोधन दे दौरान कि यूरोप साडे नाल सब तो दुनिया की लार्जेस्ट सैकेंड मंडी है वह साडे नाल कारोबार करन लई तैयार है और वह चाहते ने कि वह साडे नाल कारोबार करन क्योंकि डॉलर कन्वर्जन के उपर अगर यूरो दे विच जाइए तो कनेडियन वस्तां जिहड़ियां ने वो जो अमेरिका दे रहा हैगा वो इन्हां नूं बहुत जिहड़ियां वधिया रेट दे उत्ते पैंदियां ने व्यापारिक तौर दे उत्ते देखा जाए दूसरे पासे 99% जिहड़ी गैस है वो कैनेडा तो खरीदण वाला जिहड़ा गाहक है अमरीका अपने ही जिहड़ा हैगा सप्लायर नूं थ्रैट कर रहा हैगा कि तेरी मैं सप्लाई बंद कर दूंगा यानी कि मैं अपने घर के अंदर गैस भी बंद कर दूंगा तेरी मैं सप्लाई बंद कर दूंगा तुसी सिलेंडर वाले नूं कहो कि तेरी मैं तेरे ना मैं सिलेंडर आने बंद कर दूँ मेरे घर जानता रहा तू

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: Namaskar, Sasikal, I am Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mataji Chowki. On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Herman. And I want to tell you that this evening म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी। हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है। सो गाइज, सी यू ऑन 4th September।
2: Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television. Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet, and Realtor Harp Garival present the.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के वतन दूर किरण होनी पेश करेंगे, नाल दी नाल मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करेंगे, सुखी निज साहब भी हाजरी लाउणगे। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है जी। अज 6:34 ते सूरज आया ते 8:04 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 7:31 ते शाम नू आएगा, सवेरे 4:46 ते चले जाना। अज दा तापमान 26 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नू चखड़ झोले, थंडरस्टॉर्म, मीह नेरी सब कुछ आएगा। तापमान 28 डिग्री। फ्राइडे नू 25 डिग्री तापमान, सूरज चमकदा रहेगा। सैटरडे नू 26 डिग्री तापमान, सूरज चमकदा रहेगा। संडे नू मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड 27 डिग्री। मंडे नू 28 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। हल्की हल्की बदलवाई कदे ना कदे माड़े मोटे बारिश पेगी। हेटी अर्गे मुल्क च खतरे की घंटी खड़कती रही है। 47 लोगों का कतल कर दिता गया एक गैंग वालों, ते बहुत सारे लोगों किडनैप करके उतो लै गए, भजा के लै गए। किडनैप वाले की गिणती तकरीबन 50 दसी जा रही है। पिछले हफ्ते लॉब लॉज वाले ने फैसला कर लिया ग्रोसरी चेन ने कि जिहड़ा दाला सब्जियां उत्थे फल फ्रूट पए ने उन्हां ते जिहड़ा लिखिया हुंदा ने कैनेडा दा, ए मैक्सीको दा, ए यूएसए दा, उह सारे साइंस उंजे चकते उन्हां ने। भाई साहब फिर साडे जिहड़े कैनेडियन ने हो गए गुस्से, कहिंदे इह की कीता होए तुसीं। हुण उन्हां ने फिर दुबारा सारे सिंबल ला दिते जिहदे विच इह जी कैनेडा दा माल है, ए यूएसए दा, ए मैक्सीको दा, ए इंडिया दा। इंडिया दा हम भी आउंदे अपने ग्रोसरी स्टोरां दे, ओ एक पेटी खोल के टेपा टुपा ला के आ कर और कर नक नूं संघा संघा। खैर
1: विजन वैनिटीज दे न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नई नई वैनिटीज दी परचेज दे सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 9056711800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन।
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स। कॉल 9052308800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL because we care.
0: Are you ready? Tikka Junction Lay 647-429-4040. Catering karoni hai choti vade function lay, no problem. 647-429-4040. Live cooking karoni hai kare, no problem. 647-429-4040. Tusi inare banquet hall ya lounge vich choti vadi party karni hai, no problem. 647-429-4040. 647-429-4040.
6: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते
1: 0 Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vichon Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne ja tusi visa services di pal de vichon puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.
2: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है
4: 9 Ferries in Low Buffering Ala 4K Ultra High Quality IPTV Box Hove.
5: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा
6: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
4: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
5: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: ये कहते मुझसे सब है,
7: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी। ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ। चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900।
1: नी मर्जा कादिया गल्ला ने बई ओही रेस्टोरेंट ने दो चार ओही दो चार चीजा खान नु फिर भी लोकां ने 50 लाख चुक्या कनेडा आउन नु।
2: अप्पू आजी एदा मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए।
1: नी मैं मर्जा ओथे की होणा
2: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना ओथे ही ता मिलदा। सही सुनया बई जिन्ना सोहना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको। स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
3: जेकर तुहाडी बेसमेंट लीक हो रही है नहीं ठीक हो रही तो तुहानूं मैं 22 सतमिंदर उन्हां दा नाम दिंदा। इन्हां ने बेसमेंट दे विच एक ऐसा इंजैक्शन है जिहड़ा ओह लाउंदे आ कि बेसमेंट दा खंघ जुकाम सारा ही हट जांदा। 22 सालां दा एक्सपीरियंस है 22 सतमिंदर उन्हां नूं। सो 25 साल दी वारंटी भी करदे आ कि दुबारे मुड़ के लीक नहीं होगा चाहे अंदरले पास्यों जां फिर बाहरले पास्यों डिग करके भी तुहानूं सर्टिफिकेट स्पैशल देणगे। बेसमेंट लीकिंग दा पक्का इलाज करवाउणा तां 22 सतमिंदर उन्हां नूं कॉल कर लिओ। नंबर नोट कर लो, एक क्रैक आ, दो क्रैक ने, फाउंडेशन च क्रैक आ, तां नंबर नोट करो 416-451-4565 416-451-4565 416-451-4565।

0: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444
1: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 530 तो।

0: एक चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरा पहला ही क्या सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी।

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने। गड्डी चलाउणी मुश्किल, टीवी देखना औखा ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे। इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। इह प्रीमियम कैटरैक सर्जरी माड़ी नजर नूं भी कस्टमाइज कर दिंदी है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जांदी है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोल देने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumia.io, 289-982-9597, 289-982-9597। जे तुसी जाना होवे किसी भी टोरंटो आइलैंड्स नो, सेंटर आइलैंड, वार्ड्स आइलैंड या हैनलिंस पॉइंट, ता लेके जाओ T. वाटर टैक्सी। फेरी दियां 2-3 घंटे दियां लाइनअप्स तो बचो अते लेके जाओ अपनी प्राइवेट T. वाटर टैक्सी। T. वाटर टैक्सी दी डॉक लोकेटेड है 1 क्वींस की ईस्ट ते, यंग अते क्वींस की ईस्ट दे बिल्कुल कॉर्नर ते। मामूली जिहा रेट अते आराम नाल राजा वांग जाओ अपनी प्राइवेट वाटर टैक्सी ते। T. वाटर टैक्सी 6473708368। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੌਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। T. ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। T. ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ।